0: cadê quando ma bu da tihini? Eh? Kong kong kong. Ki kolan me ani da gade carry viru dekho de. Tu me da te do vet. Aha, vettu ni ta dennu edo. Ta dennu e ka palala mane. Mala me nu kurane kujeng ane kujeng.
1: But do I have to do that? Mama te wa kya danta?
0: Ah, avanga de dekho de. ma dekho de vudu kollagen ta titbi
1: labba
0: gamus nida hedun la mit dakka datta reet to bala reet changulin ta datta
2: ee
0: a warang hude do kowa ke ta kuri do ki
1: suleiman alai salam ge wahaka
0: suleiman alai salam ge wahaka do
1: kowa ke mamma me di kiya den ti orani
0: mi ham te kudin ge foin haru ganu mamma nagan e wahaka adi nukien ta hivvaru ga do kujja wahaka
1: a adi nukie
0: میں سم کے قرآن گا میں اللہ بیان کو دے واہ واہ واہ حق تک ہیں گے اڑوان تے تیت بھی
1: لب
0: اے می کے گا گن کان ہتر ہا سحر کرے اللہ کے امر فلن اکلان کے رسول ابراہیم علیہ السلام میس تکنا دین گوالا و من گین دے ود وسور در پر میں نے تے ابراہیم علیہ السلام
1: یس
0: کیتا دارکل لبڑا گا تے ابراہیم علیہ السلام
1: ದೇದರಿಕಲು
0: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ ಸಲಾಂ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ದೀನ ಗ್ವಾಲವ ಮುಂಗೆಂದವಿ ದುವಸ್ವರು ಇಂಗೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನಕಿ ಅವ್ವಾಹ್ ಗ್ಯಾಮುರ್ ಫುಳ ಫುರಿಹಮೆ ಕಿಯಮಂತೆರೆ ವಡ್ಯಾಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಬೇಕಲೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲು ಹಾಜರ್ಗೆ ಫಾನ ದರಿಕಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾನ್ ದಿರಿಯುಳ್ವ ಮುಂಗೆಂದವಿ ಫರ್ಬದಾಗೆ ವಾದಿ ಏಕ ಫರ್ಬದೆಂಗೆ ದೋ ಮಿಕುದಿನ್ನ
1: ಮಿಹಾರು
0: ಎತನ ಕಿಯನಿ ಮಕ್ಕ
1: ವಾದಿಯ ಕಿ ಕಾಚೆ
0: ವಾದಿಯ ಕಿ ಹುಸ್ ಬಿಂ ಗೆ ಹುಸ್ ಬಿಮೆ ಕಗೆ ಗಾಹೆಂ ಎಗೊತಂ ಎವ್ವೆ ಸಿಚ್ಚೆನ್ ನುಹುನ್ನ ಹುಸ್ ಬಿಮ ಕ್ಯಾನಿ ವಾದಿ ಫರುಬದಾಗೆ ವಾದಿ ಮಿ ಫರುಬತ್ತಂ ಹುರಿ ವಾದಿ ಎಂಗೆ ಇಂಗೆ ತಿಕುನ್ನ ಫೆನ್ನಾನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೊತ ಹುನ್ನ ತಂತ ಎಕ ಮಿಹಾರು ಎತನ ಕ್ಯಾನಿ ಮಕ್ಕ ಇಂಗೆ ಎತಾ ಮಿಹಾರು ಗೆವೆ ಸುರೆ ದೊ ಬೊಡೆತಿ ಇಮಾರತ್ತವೆ ಸುರೆ ಎಹೆನ್ನು ವಾಹಕಾಗ ಅನೆಬ್ಬಾ ಕಿಯಮ ಕೊಮ್ಮೆಕ ಸಲಾಂ ಲವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣ ಎಡ್ರಿಯಕು ಹುವ ಫೆನ್ ಫುಳು ಫೆನಿವಡಾನ್ನಿವಿ ಎ ಹುವ ಫೆನ್ ಫುಳುಗ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣ ಫೆನಿವಡಾನ್ನಿವಿ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣುಗೆ ದಾರಿಕಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಗುರ್ಬಾನ್ ಕುರವಣಿಕೊ
1: ಗುರ್ಬಾನ ಕಿ ಕೋಚ
0: ಎಚ್ಚಿ ಗುರ್ಬಾನ್ ಕುರುಮಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಕಥಿಲೆವ್ವು ದೆನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣ ಹುವ ಫೆನ್ ಫುಳುಗ ಮಿ ಫೆನಿವಡಾಗತಿ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣುಗೆ ದಾರಿಕಲು ಎಗೊತ ಕುರುಬಾನ್ ಕುರೆವಿತಂ ಕಥಿಲೆವಿತಂ ಏಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಅಮುರ್ ಫುಳ ಹಂಗೆ ನಬಿ ಬೇಕದುನ್ನ ಹುವ ಫೆನ್ ಫುಳು ಫೆನಿವಡಾನ್ವ ಕಂತತ್ತೈಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ವಾಹಿ ಏಮ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಅಮುರ್ ಫುಳು ಎಹಿಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಅಮುರ್ ಫುಳ ಫುರಿಹಮೆ ಕಿಯಮಂತೆರಿ ವಡಾಗತುಮ ಸಲಾಂ ಲವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾನ್ನಿಮೆವಿ ನಾ ನಬಿ ಬೇಕದುನ್ನ ಫೆನಿವಡಾನ್ವ ಹುವ ಫೆನ್ ಫುಳಕಿ ಹಮ ಹಗೀಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏಕಂಕಮೆ ಕುರಂ ಅಮುರ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಂಕ ಎಗೊತ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲು ಕಬೂಲ್ ಕುರವಣಿ ಏಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಫಾನ್ ನಿಮ್ಮವಿ ಕೊಂಗತುಗ
1: ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನಿಗೆ ದಾರಿಕಲು ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲಾಹ ಗುರುಬಾನ್ ಕುರೆವುಮ
0: ಏರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾನಿಕಿ ಅರ ತುಪ್ಪುಳು ಬೇಫ್ಳೆ ಅರ ಕುಡೈರುಗ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕನಿ ದೋ ನಮಿಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಫಾನ ಫೆನ್ವಡಾನ್ನಿವಿ ಹುವ ಫೆನ್ಫುಳು ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾನ ವಿದಾಳ್ವಿ ದೆವ್ವಿ ಏಮ ದಾರಿಕಲುನವಿಸ್ ಮಿ ಕಿಯಾದೆವ್ವಿ ಹುವ ಫೆನುಗ ವೀಗುಯ್ ದೆನ್ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಹದ್ವಾ ಬೊರುಕುರೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಏ ಅಮುರ್ ಫುಳ ಫುರಿಹಮೆ ಕಿಯಮಂತ್ರೆ ವಡಾಯಗತುಮ ಬೇನು ಫುಳೆ ವಡಾಯಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾನಕಿ ವರಂ ಹಿವ್ವರು ಗದ ಕುಜ್ಜ ಏಮ ವಾಹಕಾಗ ಮುಳೆ ಹಿವ್ವರು ಗದ ಕುಜ್ಜಕಿ ಕಾಕು
1: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾನ
0: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾನಕಿ ವರಂ ಹಿವ್ವರು ಫುಳು ಗದ ಕುಜ್ಜ ಏಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಿರೆ ಜೆಹಿಲು ವುಮೆನ್ನೆ ಏಯ್ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳು ಎಗೊತ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳು ಹೋಫೆನ್ ಫುಳುಗ ಫೆನ್ ವಡಾಯಗತಿಯೇ ತರಿಫ್ ಕಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗುರುಬಾನ್ ಕುರೆವು ಮ ಕಥೆಲೆವ್ವಿತ ಏನು ಏಕಂ ಕೊಸ್ ಬಿರುಫುಳೆ ನುಗಣೇನು ವರ ಹಿವ್ವರು ಫುಳು ಗದೆ ಎನ್ನುದೊ ದೆಮ್ ವಾಹಕಾಗ ಮಿಬುಣನಿ ದೆಮ್ವೆಸ್ ಕುಡಕೊವ್ವೆಸ್ ಜೆಹಿಲುಂ ವೆವಡಾನುಗೆನ್ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾಣುಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳು ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣಂ ಮಿ ದನ್ನವನಿ ಏ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳಾಯೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮುರು ಕುರೆವಿ ಕಂತ ಕುರವ್ವಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದು ಕುರೆವ್ವಿಯ ಅಳುಗಣಕಿ ಕೆತ್ತಿರಿಯ ಕಮುಗ ಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ ದೆಕವಡಾನ್ನವಾನೆ ಕಿಹಾ ಕೆತ್ತರಿ ಕಿಹಾ ಇವ್ವರು ಗದದು
1: ಹಾದ ಇವ್ವರು ಗದ
0: ವರಂ ಇವ್ವರು ಫುಳು ಗದ ವರ ಕೆತ್ತರಿ ಏನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಮಿ ಇವ್ವರು ಫುಳು ಗದ ಬಸ್ ಫುಳು ಅಡಿ ವಡ್ಯಾನ್ಯಮು ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বড় বড় উফা ফুল করেবি দেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাইল গফান কুরবান করেবমটকা মক্কা কে ক্যারি গওয়া ওয়াদিয়কা এ তুপলো ইসমাইল গফান গেন দেবি গে এতনে মি আর কেনে মিনা গে এই আন ইসমাইল গফান কুরবান করবং বড়ান্নি বি তনক কেনে মিনা এ হিন্দু এতনু শয়তানা একলে গফান ফেনি বড়ান্নি কাকা মি দিমাবি এতনু
1: শয়তানা ও
0: দেন শয়তানা মি কুরি কান তঙ্গেতা আল্লাহ কে আমর ফুলা এ দেবে ফাকালুন তাবাবি নুদিনু মটকা মাসেকে কুরা ফেশি এহেরি গোস কন্দো এহেদু ইব্রাহিম গফান বিম্মতিন কুড়া হিলাকলে নঙ্গবাগে শয়তানা এ দিমালা উক্কবম ফিটটেবি এই শয়তানাকে কিবা সালামে বান্দো শয়তানা আসমি কি কুরানি নুবা ওয়াসওয়াস দেনিদো দেন এ হিসাবু ইসমাইল গফান উইস একলে গফান গ বাপ্পা ফুলাইকু শয়তানা এ দিমায় হিলা উক্কবম ফিটটেবি গে এহিমা ইব্রাহিম গফান উইস আদি ইসমাইল গফান উইস শয়তানা আওয়া ফসালি কি কোগে
1: গাও কাগে
0: হিলা হিলা
1: হিলা উ কাগে
0: আ হিলা উ কাগে এহেম বিম আজ্জু গালু কম মিদানিনু দো গোসেস জে মিনায় গোসিয়া এককল হিলা উ কাগ এই হাজ্জু গে রুকুন তাও গে তেরেন রুকুনে মিনায় গোস হিলা উ কুং ওবেনু এই এহেম আ এহেম ইংগে দো কিয়বিন তাইবা দেন আল্লাহ কে রাসূল ইব্রাহিম গে ফান শয়তানা দিমা হিলা উককেউম ফহু একলে ফান গে লোবয়ে তি দারিকালুম ইসমাইল গে ফান গে মুন ফুলু নিবাহ করাবা বিম্মতি গা বেবেবি এই আল্লাহ গে আমুর ফুলা ইসমাইল গে ফান কুরবান করেবেইরু একলে ফান গে এ লোবয়ে তি দারিকালুম গে মুন ফুলু একলে ফান নুফেনু মটকা এই ফাহারে গেস পাপ্পে কু দারি ফুলা কু কাতিলা ইরুগা ফাসেহে নুয়ানে দো কুদিঙ্গে মুনা দিমালে বালাকা ফাসেয়ানে তা
1: নুয়ানে
0: আ নুয়ানে বারে দেরওয়ানে দো একম কুস মি মে আল্লাহ গে আমুর ফুলেভি মে একম কিয়মং গতম গে গতু ইব্রাহিম গে ফান মি কাম মি গত মি কুরাবানি হিত ভিহাভেস বাসবাস নুয়ান্নানে কাহল গতু কদ দো দেরওয়ে গেং গস মিসালক এ আমুর ফুলা কিয়ম নুয়ে বিজ্জা মা দেরে এন্ন দো দে কম মে কাস ইসমাইল গে ফান কুরবান কুরেবু মটকা ইব্রাহিম গে ফান ওয়ালি নেং গে ভি হিন্দু কুরবান কুরআনে খাম্বলি একায়কো কিরিতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গে আমুর ফুলা জিব্রিল গে ফান এতনা বড়ানেবি কিহিনে বিবি মিহার হামা কুরবান কুরেব মাটাকা ইব্রাহিম গে ফান ওয়ালি নেং গে বিতনা এতরা মি বড়া গতি কোম্বে কলে
1: জিব্রিল গে
0: ফুলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গে আমুর ফুলা জিব্রিল গে ফান এতনা মি বড়া গতি দেন ইসমাইল গে ফান গে বাদলুগা এ খাম্বলি কুরবান কুরেবমা জিব্রিল গফান ইব্রাহিম গফানং এঙ্গেবি
1: কাম্বালে কি শীপ দ
0: আ কাম্বালে কি হাম শীপ এহেম বিমা আমকো জানোয়ার এচি মি কাতিলানি কুরবান কুরমটকা দ এমে গতা ইসমাইল গফান গে বাদলুগা এ কাম্বালে কুরবান কুরেবুমা জিব্রিল গফান ইব্রাহিম গফান মি এঙ্গেবি এহেম বিমা দেন ইসমাইল গফান কাতিলাবা কা নুজহেনেন দ এহিন্দু একলে গফান ওয়ারা পোডং উফা কুরাবা এ কম্বলি কুরবান করেবি সালাম লেবি ইব্রাহিম গফানা একলে গফান গে দারিকলুম ইসমাইল গফান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়া কিয়মান তেরিবা মিমবরু মি হাতসাং মুলি দুনিয়েন হাম ওয়েগে দিয়া এহিমি এ ফরতম কিহিনে মিবি ফরতম হুয়াফেন ফুলুগা ফেনি বড়া গতি ইব্রাহিম গফানং একলে গফান গে দারিকলুম মান আল্লাহ টাকা কুরবান কুরবা মানজার এহেন দেন দেন আহমে দেন এগোতাং হাম এ আমুর ফুলা কিয়মাম বে বড়া গাতুমা ইব্রাহিম গফান আওয়াসে বড়া গাতি এহনু এ ফাও দারিকালু নবিস এ হুয়াফেন ফুলু গে ওয়াহাকা কিয়া দেবি দারিকালু নবিস কোম ওয়াহাকে কিয়া দেবি
1: হুয়াফেন লু গে ওয়াহাকা
0: আ হুয়াফেন ফুলু গে ওয়াহাকা কিয়া দেবি এহিম দেন দারিকালু কান্ত কুরেবি কিনে হাম মান আল্লাহ কে আমুর ফুলা কিয়মাম বে একাং এগোতা কুরাং বাপ্পা ফুলা হিভর দেবি তো এ হিভর হুরিকাম বাপ্পা ফুলে দাক্কায় দেবি এহেনু এহেম বিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়মান তেরিবা মিমবরু মি হাদিসাং আহমেনা মি এঙ্গেনি এ দুয়াস আলহা ঈদগে গতুগা আল্লাহ কে আমুর ফুলা বড়ু ঈদ ওয়ান্নেরু ও এন উলহিয়া কাতিলু বাকারি কাতিলু ওয়েনু দো ehemvima eduwas alha iduge gotuga allah ge amur fula miyaduwas huriha muslimun dani faahaka kuramu komme aharukus muslimun eduwahu allah hataka qurban kure no mi hatsen aharmina wala muhimu ibratin eba hasil wenu ko bai ibrateki konka be mingeni
1: ei ma allah ge amur fula taka kiyaman terewan jeheneka
0: mashallah wara rangal ge hamu wara podam wahaken ebainge mawwa amur kurabwa fi komme kamaka harme eya kiyaman terewan jehene kando ei aharmen ge din amur ko fenama aharmen wan jeheni aharmen ge agu bodu mudala muli diriulum wes allah hataka gurban kurabayaka ei emme ha rasul be kalunna heolafa salih alutakun ekan kuffa waggoi ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵਹੀ ਕੁਰੇ ਵੀ ਬਸ ਫਲੇ ਗੇ ਮਾਨਾ ਗੇ ਬਵੇ ਕਲੇਕ ਫਾਨ ਵਿਦਾਲ ਵਾਸ਼ੇ ਹਮ ਕਸ਼ਵਰੂ ਤਿਮੰ ਕਲੇਕ ਫਾਨੂ ਗੇ ਨਮਾਦਾ ਤਿਮੰ ਕਲੇਕ ਫਾਨੂ ਗੇ ਇਹਨੀ ਹਿੰ ਅਲਕਨ ਤਕਾ ਤਿਮੰ ਕਲੇਕ ਫਾਨੂ ਗੇ ਦੀ ਹੁ ਨੇਉਮਾ ਤਿਮੰ ਕਲੇਕ ਫਾਨੂ ਗੇ ਅਵਹਾਰ ਹੁ ਵਣੀ ਆਲਮ ਤੋ ਗੇ ਵੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਹਸ਼ੇ ਐ ਸੂਰਤੁਲ ਅਨਾਮ ਗੇ ਸਤੇਕ ਫਸਤਲਸ ਦੇਵਨਾਏ ਸੂਰਤੁਲ ਅਨਾਮ ਗੇ ਸਤੇਕ ਫਸਤਲਸ ਦੇਵਨਾਏ ਕੀ ਆਲਮ